प्यार कर लो, कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो, अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो, कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो, ये ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।